एक एक घंटे का प्रोग्राम होता है, किसी को एक दम 3 घंटा 5 घंटा बैठना मुश्किल होता, देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो जरा मुश्किल, शुरू कर दे, इसको ऑफ कर दीजिए, अब गर्म हो गया।

0: मिजाज दोस्तां बदला, नजर एक उनकी क्या बदली के कुल सारा जहां बदला। निगाह अकरबा बदली, मिजाज दोस्तां बदला, द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो सडनली वी फाइंड दैट देयर इज ए काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर, देयर इज ए काइंड ऑफ अ पुल, देयर इज अ काइंड ऑफ टेंशन। निगाह अकरबा बदली, मिजाज दोस्तां बदला, दोज हुए फ्रेंड्स ऑल्सो सडनली वी से द फ्रेंडशिप हैज एंडेड। Why it has ended? Because of the disobedience of Allah Tabaraka wa Taala. Nazar ek unki kya badli ke kul sara jahan badla. The moment we are going to be disobedient to Allah Tabaraka wa Taala, we will find everybody turning away from us. No one will remain as our friends. We are all complaining that these days everybody is our enemy. So why is everyone our enemy? Why is it that they are not our friends anymore? Because we have been disobedient to Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. We have made nafs and shaitan our friends, and we have distanced ourselves from Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. So Allah tabaraka wa ta'ala put the hatred into the hearts of others for us. Again, they too, with a small percentage, it is some kind of test and trial. But the majority, it is nothing but azab of Allah tabaraka wa ta'ala.
1: बज़ाहिर बनी है बबातिन ठनी है, बलब दोस्ती है बदिल दुश्मनी है। बज़ाहिर बनी है बबातिन ठनी है, बलब दोस्ती है बदिल दुश्मनी है। जुबां पर सना कल्ब में बदजनी है, पसे पुश्त गीबत है ताना जनी है।

रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है आखिर।